0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने सलामती तआवुन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने का फैसला किया है। कम्बोडिया की वजारत दिफा में इतवार के रोज माहिदों पर दस्तखतों की तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें कम्बोडिया में जापान के सफीर उएनो आसुशी और कम्बोडिया के वजीर दिफा टी ए साहा ने शिरकत की। ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी ओएसए फ्रेमवर्क दिफाई साजो सामान और दीगर मवाद की पेशकश करके हम ख्याल ममालिक के साथ सलामती तआवुन बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के तहत कम्बोडिया के लिए ये पहली फरहमी होगी। जापान 500 मिलियन येन या तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के मवासलाती आलात और गश्ती कश्तियां फराहम करने का इरादा रखता है। जापानी हुकूमत ने फिलिपाइन को ओएसए प्रोग्राम के जरिए साहिली निगरानी के रेडार सिस्टम फराहम किए हैं। मार्च में उसने थाईलैंड को आफात के खिलाफ रद्द अमल और इमदाद व बचाव के आलात फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया था। कम्बोडिया मिलिट्री कम्युनिकेशन स्कूल कायम करने का इरादा रखता है और जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स के साथ तआवुन का भी मंसूबा बना रहा है। जापानी सफीर ने दस्तखत की तकरीब के बाद एनएचके को बताया कि उनका ख्याल है कि ओएसए के जरिए जापान और कम्बोडिया के दरमियान सलामती तआवुन एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कम्बोडिया के साथ तआवुन के ठोस तरीकों पर मुशावरत करना चाहेंगे। मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर के स्पेन और टॉप रैंक वाले अर्जेंटाइन के दरमियान मैच हुआ। मैच पर शुरू से ही स्पेन हावी रहा और दाएं जानिब से बार बार हमले किए। टीम की क्यादत 19 साल फॉरवर्ड लामीन या महल और मिडफील्डर रोड्री कर रहे थे। दोनों टीमों ने मजबूत दिफा का मुजाहरा किया जिसमें 90 मिनट का खेल बगैर किसी गोल के बराबर रहा और फैसले के लिए इजाफी वक्त दिया गया। मुतबादिल के तौर पर खेल में शामिल होने वाले फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए फैसलाकुन गोल करके इस तातुल को तोड़ दिया। स्पेन 4 टूर्नामेंट्स में पहली बार चैंपियन बना है जबकि अर्जेंटाइन मुसलसल टाइटल जीतने वाली तारीख की तीसरी मर्दों की टीम बनने में नाकाम रहा। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी को अपना खेल खेलने से रोकते हुए स्पेन ने फाइनल मैच के ज्यादातर वक्त पर अपना काबू रखा। मेसी ने 8 गोल के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फ्रांस के किल ए हान बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए। वो 2 बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपको है कि अक्वा मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को जापान के कदीम दारुलहुकूमतों के आसार कदीमा मकामात और उनसे मुतल्लिका अमलाक को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करेगी। यूनेस्को ने इतवार को जनूबी कोरिया के शहर पुसान में अपनी आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास का आगाज किया। जापान की हकूमत ने मगरबी प्रिफेक्चर नारा में वाकया आसुका और फुजीवारा के कदीम दारुलहुकूमतों को फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। आसार कदीमा के ये मकामात 6वीं सदी के अवाखिर से 8वीं सदी के अवाइल तक के हैं। वो आसुका गांव, ताशीहारा और साकुराई शहरों में हैं। कदीम दारुलहुकूमतों को शामिल करने या ना करने के बारे में बातचीत 24 और 27 जुलाई के दरमियान होनी है। गुज़श्ता माह यूनेस्को के एक मशावरती इदारे ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को आलमी सकाफती विरसा मकामात के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए और उन कदीम मकामात को 4 में से सबसे आला दर्जा दिया जाए। रजिस्टर होने की सूरत में ये मकामात जापान का 27वां आलमी सकाफती विरसा मकाम बन जाएंगे।
1: और अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान भर में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और मुल्क के कुछ मशरकी हिस्सों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि कांतो कोशिन और तोकाई इलाकों में बारिश का मौसम बज़ाहिर खत्म हो गया है। हुकाम ने कई इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। पीर की दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के टोयोटा शहर में दिन के वक्त का दर्जा हरारत 38.5 डिग्री

और इबराकी प्रिफेक्चर के दायगो कस्बे में 38.4 तक जा पहुंचा। और अमरीकी फौजी हुक्काम ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हुए कहा है कि हमलों का मुसलसल नवा दिन मशरकी वक्त के मुताबिक इतवार रात 10 बजे ख़त्म हुआ। और हुकूमत जापान ने सलामती ताउन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान देने का फैसला किया है। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रविवार को चीन के एक नौसैनिक पोत ने जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के आसपास स्थित देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड के भीतर मशीन गनों से गोलीबारी अभ्यास किया। मंत्रालय के अनुसार प्रशांत महासागर में ओकिनो तोरिशिमा द्वीप से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चीनी नौसेना के 2 मिसाइल विध्वंसक और एक आपूर्ति पोत, साथ ही रूसी नौसेना का एक फ्रिगेट देखा गया। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने पुष्टि की कि ये चारों जहाज पूर्वोत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। बाद में पुष्टि की गई कि इन चार जहाज़ों में से एक यानी चीन के मिसाइल विध्वंसक ने द्वीप के लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जापान के ईईजेड के भीतर अभ्यास किया। चीनी विध्वंसक पोत के चालक दल ने आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद जहाज़ों को अभ्यास स्थल और अवधि के बारे में सूचना पहले ही दे दी थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि भी की कि अभ्यास के समय रूसी फ्रिगेट भी आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद था। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी जानकारी में यह पहला मामला है जब जापान के ईईजेड के भीतर किसी विदेशी पोत द्वारा गोलीबारी अभ्यास किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस प्रकार के अभ्यास से आसपास के जलक्षेत्र में संचालित जहाज़ों को खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने राजनयिक माध्यमों से चीन से संपर्क किया है और वो क्षेत्र पर लगातार नज़र रखते हुए हालात की टोह ले रहा है। उक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ओडेसा स्थित दक्षिणी काला सागर बंदरगाह से रवाना हो रहे एक मालवाहक जहाज पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए हैं। उक्रेनी बंदरगाह प्राधिकरण व नौसेना के अनुसार रविवार को हुए इस हमले से गिनी बिसाओ के ध्वज वाले जहाज में आग लग गई। ये जहाज मकई ले जा रहा था। बंदरगाह प्राधिकरण का कहना है कि मारे गए 10 लोगों में चालक दल के भारतीय और सीरियाई सदस्य तथा प्राधिकरण का एक समुद्री पायलट शामिल है। ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई की शुरुआत से अब तक बच्चों सहित 28 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 71 घायल हुए हैं। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि जहाज़ों और काला सागर बंदरगाह सुविधाओं पर रूसी हमलों का उद्देश्य शायद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था व निर्यात क्षमता को कमज़ोर करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को प्राप्त करने की मुहिम में जुटे एक जापानी समूह ने दक्षिणी ताइवान में प्रयोग के तौर पर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। युद्ध में मारे गए लोगों की अस्थियां तलाश कर स्वदेश लाने से जुड़े इस जापानी समूह के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सोमवार को पिंदोन काउंटी के बाशी जलमार्ग से सटे तट पर खुदाई का काम शुरू किया। ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित इस जलमार्ग के आसपास का क्षेत्र युद्ध के दौरान एक अहम जहाजरानी मार्ग था। समूह ने 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जमीन के एक हिस्से में सावधानीपूर्वक खुदाई की। समूह को जापान के कल्याण मंत्रालय ने इस कार्य के लिए भेजा है। समूह के अनुसार यदि अस्थियां मिली तो वो उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। गौरतलब है कि अमरीकी पनडुब्बियों ने जापान की तत्कालीन शाही सेना के जहाज़ों को डुबो दिया था जिसमें कथित रूप से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि कई मृतकों के शव पिंदोन तट पर बहकर आए थे। खुदाई का काम 31 जुलाई तक 2 जगहों पर किया जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को ताइवान से बरामद करने के जापान सरकार के प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। यदि ताइवान में अस्थियां मिली और उन्हें बरामद किया गया तो लगभग आधी सदी बाद ऐसा पहली बार होगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वो कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। उसका कहना है कि ये कदम अमेरिका से निर्यात होने वाली वस्तुओं जैसे कारों, मदिरा और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा के भेदभाव के जवाब में उठाया गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि ट्रंप ने 1930 में पारित शुल्क अधिनियम की धारा 338 के तहत उक्त शुल्क लगाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ये शुल्क कनाडा से आयातित वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, मदिरा और हॉकी स्टिक पर लागू होंगे और 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। धारा 338 राष्ट्रपति को अमरीकी वस्तुओं के साथ भेदभाव करने वाले देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये पहली बार है जब धारा 338 का इस्तेमाल शुल्क लगाने के लिए किया गया है। टोयोटा मोटर के नए अध्यक्ष और सीईओ कॉन केंता का कहना है कि वे वैश्विक वाहन उद्योग में तीव्र स्पर्धा के बीच आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कॉन ने अप्रैल में टोयोटा कंपनी की कमान संभाली और शनिवार को उन्होंने अपना पहला ग्रुप मीडिया साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि टोयोटा का मूल्य सृजन और कंपनी की आमदनी उसके विनिर्माण स्थलों में होती है। कंपनी प्रमुख के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे श्रमिकों की बात सुनूं और फिर सुधार करूं, जिसे हम काइज़ेन कहते हैं। कहा जा रहा है कि टोयोटा विकास और उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए उपयोग होने वाले हिस्से पुर्जों के प्रकारों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध कराती है। इसके चलते इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की संख्या में वृद्धि हुई है और कारखानों में उन्हें रखने के लिए जगह बनाना एक चुनौती है। कौन ने कहा, टोयोटा की उत्पादन प्रणाली का मूल सिद्धांत स्टॉक तथा उसके भंडारण के लिए जगह घटाकर लागत में कटौती करना है। हम ऐसे बुनियादी उपायों को आगे बढ़ाते रहेंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकारिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसुकुनत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर

0: को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
1: います। सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
2: तोकेदाई नो नाका नी इमासु,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई, यानी घंटाघर, और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
2: तोकेदाई नो नाका नी इमासु। तोकेदाई नो नाका नी इमासु।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
3: इमा दोको नी इमासु का? काइसात्सु नो माए नी इमासु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
3: इमा दोको नी इमासु का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
2: इमा
1: का अर्थ है अभी और
2: दोको नी इमासु
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
3: काइसात्सु नो माए नी इमासु,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
2: काइसात्सु
1: का अर्थ है टिकट गेट और
2: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
2: काइसात्सु नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
2: इमा दोको नी इमासु का? काइसात्सु नो माए नी इमासु। काइसात्सु नो माए नी इमासु।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
2: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
2: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
4: कोम्बिनी नो नाका नी इमासु। कोम्बिनी नो नाका नी इमासु।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
2: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
2: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमासु। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमासु।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
2: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
2: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे,

0: निगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंग गम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
1: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
0: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
1: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रविवार को चीन के एक नौसैनिक पोत ने जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के आसपास स्थित देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड के भीतर मशीन गनों से गोलीबारी अभ्यास किया। मंत्रालय के अनुसार प्रशांत महासागर में ओकिनो तोरिशिमा द्वीप से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चीनी नौसेना के 2 मिसाइल विध्वंसक और एक आपूर्ति पोत, साथ ही रूसी नौसेना का एक फ्रिगेट देखा गया। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने पुष्टि की कि ये चारों जहाज पूर्वोत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। बाद में पुष्टि की गई कि इन चार जहाज़ों में से एक यानी चीन के मिसाइल विध्वंसक ने द्वीप के लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जापान के ईईजेड के भीतर अभ्यास किया। चीनी विध्वंसक पोत के चालक दल ने आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद जहाज़ों को अभ्यास स्थल और अवधि के बारे में सूचना पहले ही दे दी थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि भी की कि अभ्यास के समय रूसी फ्रिगेट भी आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद था। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी जानकारी में यह पहला मामला है जब जापान के ईईजेड के भीतर किसी विदेशी पोत द्वारा गोलीबारी अभ्यास किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस प्रकार के अभ्यास से आसपास के जलक्षेत्रों में संचालित जहाज़ों को खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने राजनयिक माध्यमों से चीन से संपर्क किया है और वो क्षेत्र पर लगातार नज़र रखते हुए हालात की टोह ले रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ओडेसा स्थित दक्षिणी काला सागर बंदरगाह से रवाना हो रहे एक मालवाहक जहाज पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी बंदरगाह प्राधिकरण व नौसेना के अनुसार रविवार को हुए इस हमले से गिनी बिसाओ के ध्वज वाले जहाज में आग लग गई। ये जहाज मकई ले जा रहा था। बंदरगाह प्राधिकरण का कहना है कि मारे गए 10 लोगों में चालक दल के भारतीय और सीरियाई सदस्य तथा प्राधिकरण का एक समुद्री पायलट शामिल है। ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई की शुरुआत से अब तक बच्चों सहित 28 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 71 घायल हुए हैं। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि जहाज़ों और काला सागर बंदरगाह सुविधाओं पर रूसी हमलों का उद्देश्य शायद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था व निर्यात क्षमता को कमज़ोर करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को प्राप्त करने की मुहिम में जुटे एक जापानी समूह ने दक्षिणी ताइवान में प्रयोग के तौर पर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। युद्ध में मारे गए लोगों की अस्थियां तलाश कर स्वदेश लाने से जुड़े इस जापानी समूह के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सोमवार को पिंदोन काउंटी के बाशी जलमार्ग से सटे तट पर खुदाई का काम शुरू किया। ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित इस जलमार्ग के आसपास का क्षेत्र युद्ध के दौरान एक अहम जहाजरानी मार्ग था। समूह ने 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जमीन के एक हिस्से में सावधानी पूर्वक खुदाई की। समूह को जापान के कल्याण मंत्रालय ने इस कार्य के लिए भेजा है। समूह के अनुसार यदि अस्थियां मिली तो वो उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। गौरतलब है कि अमरीकी पनडुब्बियों ने जापान की तत्कालीन शाही सेना के जहाज़ों को डुबो दिया था जिसमें कथित रूप से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि कई मृतकों के शव पिंदोन तट पर बहकर आए थे। खुदाई का काम 31 जुलाई तक 2 जगहों पर किया जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को ताइवान से बरामद करने के जापान सरकार के प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। यदि ताइवान में अस्थियां मिली और उन्हें बरामद किया गया तो लगभग आधी सदी बाद ऐसा पहली बार होगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वो कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। उसका कहना है कि ये कदम अमेरिका से निर्यात होने वाली वस्तुओं जैसे कारों, मदिरा और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा के भेदभाव के जवाब में उठाया गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि ट्रंप ने 1930 में पारित शुल्क अधिनियम की धारा 338 के तहत उक्त शुल्क लगाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ये शुल्क कनाडा से आयातित वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, मदिरा और हॉकी स्टिक पर लागू होंगे और 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। धारा 338 राष्ट्रपति को अमरीकी वस्तुओं के साथ भेदभाव करने वाले देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये पहली बार है जब धारा 338 का इस्तेमाल शुल्क लगाने के लिए किया गया है। टोयोटा मोटर के नए अध्यक्ष और सीईओ कॉन केंता का कहना है कि वे वैश्विक वाहन उद्योग में तीव्र स्पर्धा के बीच आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कॉन ने अप्रैल में टोयोटा कंपनी की कमान संभाली और शनिवार को उन्होंने अपना पहला ग्रुप मीडिया साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि टोयोटा का मूल्य सृजन और कंपनी की आमदनी उसके विनिर्माण स्थलों में होती है। कंपनी प्रमुख के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे श्रमिकों की बात सुनूं और फिर सुधार करूं, जिसे हम खाइजेन कहते हैं। कहा जा रहा है कि टोयोटा विकास और उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए उपयोग होने वाले हिस्से पुर्जों के प्रकारों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध कराती है। इसके चलते इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की संख्या में वृद्धि हुई है और कारखानों में उन्हें रखने के लिए जगह बनाना एक चुनौती है। कौन ने कहा, टोयोटा की उत्पादन प्रणाली का मूल सिद्धांत स्टॉक तथा उसके भंडारण के लिए जगह घटाकर लागत में कटौती करना है। हम ऐसे बुनियादी उपायों को आगे बढ़ाते रहेंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटाघर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटाघर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी-मोशी, ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसोकुनत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी

0: और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
2: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
3: 今どこにいますか？改札の前にいます。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले एक आदमी ने कहा,
3: 今どこにいますか？
0: अभी कहाँ है?
2: यहाँ
1: 今
2: का अर्थ है अभी और
1: どこにいますか
2: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
3: 改札の前にいます。
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
1: 改札
2: का अर्थ है टिकट गेट और
1: माए
2: का अर्थ है सामने, तो
1: काई सच नो माए नी
2: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
1: इमा दोको नी इमास का? काई सच नो माए नी इमास। काई सच नो माए नी इमास।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
1: कोम्बिनी,
2: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
1: नाका।
2: तो कोशिश कीजिए,
4: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
1: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
1: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
4: वकारिमाश्ता।
1: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
2: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
6: 時計台の中にいます。
5: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
6: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
2: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
2: इनमें खाने के डिब्बे, ओनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
2: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 21 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रविवार को चीन के एक नौसैनिक पोत ने जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के आसपास स्थित देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड के भीतर मशीन गनों से गोलीबारी अभ्यास किया। मंत्रालय के अनुसार प्रशांत महासागर में ओकिनो तोरिशिमा द्वीप से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चीनी नौसेना के 2 मिसाइल विध्वंसक और एक आपूर्ति पोत, साथ ही रूसी नौसेना का एक फ्रिगेट देखा गया। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने पुष्टि की कि ये चारों जहाज पूर्वोत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। बाद में पुष्टि की गई कि इन चार जहाज़ों में से एक यानी चीन के मिसाइल विध्वंसक ने द्वीप के लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जापान के ईईजेड के भीतर अभ्यास किया। चीनी विध्वंसक पोत के चालक दल ने आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद जहाज़ों को अभ्यास स्थल और अवधि के बारे में सूचना पहले ही दे दी थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि भी की कि अभ्यास के समय रूसी फ्रिगेट भी आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद था। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी जानकारी में यह पहला मामला है जब जापान के ईईजेड के भीतर किसी विदेशी पोत द्वारा गोलीबारी अभ्यास किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस प्रकार के अभ्यास से आसपास के जलक्षेत्र में संचालित जहाज़ों को खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने राजनयिक माध्यमों से चीन से संपर्क किया है और वो क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हुए हालात की टोह ले रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ओडेसा स्थित दक्षिणी काला सागर बंदरगाह से रवाना हो रहे एक मालवाहक जहाज पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी बंदरगाह प्राधिकरण व नौसेना के अनुसार रविवार को हुए इस हमले से गिनी बिसाओ के ध्वज वाले जहाज में आग लग गई। ये जहाज मकई ले जा रहा था। बंदरगाह प्राधिकरण का कहना है कि मारे गए 10 लोगों में चालक दल के भारतीय और सीरियाई सदस्य तथा प्राधिकरण का एक समुद्री पायलट शामिल है। ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई की शुरुआत से अब तक बच्चों सहित 28 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 71 घायल हुए हैं। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि जहाज़ों और काला सागर बंदरगाह सुविधाओं पर रूसी हमलों का उद्देश्य शायद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था व निर्यात क्षमता को कमजोर करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को प्राप्त करने की मुहिम में जुटे एक जापानी समूह ने दक्षिणी ताइवान में प्रयोग के तौर पर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। युद्ध में मारे गए लोगों की अस्थियां तलाश कर स्वदेश लाने से जुड़े इस जापानी समूह के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सोमवार को पिंदोन काउंटी के बाशी जलमार्ग से सटे तट पर खुदाई का काम शुरू किया। ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित इस जलमार्ग के आसपास का क्षेत्र युद्ध के दौरान एक अहम जहाजरानी मार्ग था। समूह ने 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जमीन के एक हिस्से में सावधानीपूर्वक खुदाई की। समूह को जापान के कल्याण मंत्रालय ने इस कार्य के लिए भेजा है। समूह के अनुसार यदि अस्थियां मिली तो वो उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। गौरतलब है कि अमरीकी पनडुब्बियों ने जापान की तत्कालीन शाही सेना के जहाज़ों को डुबो दिया था जिसमें कथित रूप से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि कई मृतकों के शव पिंदोन तट पर बहकर आए थे। खुदाई का काम 31 जुलाई तक 2 जगहों पर किया जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को ताइवान से बरामद करने के जापान सरकार के प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। यदि ताइवान में अस्थियां मिली और उन्हें बरामद किया गया तो लगभग आधी सदी बाद ऐसा पहली बार होगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वो कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। उसका कहना है कि ये कदम अमेरिका से निर्यात होने वाली वस्तुओं जैसे कारों, मदिरा और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा के भेदभाव के जवाब में उठाया गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि ट्रंप ने 1930 में पारित शुल्क अधिनियम की धारा 338 के तहत उक्त शुल्क लगाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ये शुल्क कनाडा से आयातित वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, मदिरा और हॉकी स्टिक पर लागू होंगे और 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। धारा 338 राष्ट्रपति को अमरीकी वस्तुओं के साथ भेदभाव करने वाले देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये पहली बार है जब धारा 338 का इस्तेमाल शुल्क लगाने के लिए किया गया है। टोयोटा मोटर के नए अध्यक्ष और सीईओ कॉन केंता का कहना है कि वे वैश्विक वाहन उद्योग में तीव्र स्पर्धा के बीच आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कॉन ने अप्रैल में टोयोटा कंपनी की कमान संभाली और शनिवार को उन्होंने अपना पहला ग्रुप मीडिया साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि टोयोटा का मूल्य सृजन और कंपनी की आमदनी उसके विनिर्माण स्थलों में होती है। कंपनी प्रमुख के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे श्रमिकों की बात सुनूं और फिर सुधार करूं, जिसे हम काइज़ेन कहते हैं। कहा जा रहा है कि टोयोटा विकास और उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए उपयोग होने वाले हिस्से पुर्जों के प्रकारों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध कराती है। इसके चलते इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की संख्या में वृद्धि हुई है और कारखानों में उन्हें रखने के लिए जगह बनाना एक चुनौती है। कौन ने कहा, टोयोटा की उत्पादन प्रणाली का मूल सिद्धांत स्टॉक तथा उसके भंडारण के लिए जगह घटाकर लागत में कटौती करना है। हम ऐसे बुनियादी उपायों को आगे बढ़ाते रहेंगे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आह काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमे ओसोकु नत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटा घर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
5: इमा
1: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माए नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।

0: में का जापानी शब्द है
1: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमासु। インフォメーションの横にいます。
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
4: वकारिमाश्ता।
1: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
3: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
5: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
6: あ、カイト、こっちこっち。
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
3: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
3: इनमें खाने के डिब्बे, ओनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
3: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
3: सायोनारा।